0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबेद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। शिराजी साहब, जापान में कल बुजुर्गों की ताजीम का दिन है।
1: हाँ जी, मैंने सुना है यहाँ सन 2003 से हर साल सितंबर के तीसरे पीर को बुजुर्गों का दिन मनाया जाता है, उन्हें तहफ भी दिए जाते हैं।
0: ये है योमे ताजीमे बुजुर्गान, जिसे जापानी जुबान में केरोनोही कहा जाता है। सामिन, दरअसल जापान में बुजुर्गों को ताजीम देने के लिए कोई 60 साल पहले इस दिन को कौमी तातील करार दिया गया था।
1: ये तो पता चल गया, लेकिन आप लोग ये बताएं ना कि आप दोनों घर में इसे कैसे मनाती हैं?
2: नहीं, मेरी अम्मी ने मना किया है, घर की बात बाहर नहीं करनी।
1: तो अम्मी के लिए कोई तोहफा ले जाएं?
2: कहा ना, बाहर की बात अंदर की बात बाहर नहीं करनी।
0: अच्छा, ज्यादातर जापान में ज्यादातर बुजुर्गों को उनके कमाऊ बेटे बेटियां कोई ना कोई तोहफा देते हैं।
2: जी बिल्कुल, और जापान में उमूमी रवाज ये है कि बच्चे माँ बाप के साथ खाना खाते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं।
0: और उस दिन से पहले कई स्टोर केरोनोही कॉर्नर मखसूस कर देते हैं, जहाँ बुजुर्गों के इस्तेमाल के लिए चीजें, मसाज चेयर और घरेलू बर्की आलात वगैरह होते हैं।
1: अच्छा, तो अब मुझे आप दोनों के लिए ऐसा कोई तोहफा देना शायद पड़ेगा।
0: ढेर सारे पैसे जमा करें। वैसे एक नया और आसान रिवाज भी सुन ले। मेरी एक जापानी दोस्त ने बताया कि आजकल कई बच्चे एआई के साथ बुजुर्गों के दिन के ग्रीटिंग कार्ड्स बना लेते हैं।
2: अच्छा, साले नौ या ईद मुबारक जैसा, लेकिन इस कार्ड पर किसी तस्वीर, कैसी तस्वीर बनाई जाती होगी? ईद कार्डों पर तो हिलाले ईद वगैरह होता है।
0: अरे, केरोनोही कार्ड्स पर खिजा के फूल, कोहे फूजी जैसे डिजाइन होते हैं। कोई एक खास वजह या कोई खास डिजाइन नहीं है, और जिस तरह कोई खास डिजाइन नहीं है, इसी तरह बुजुर्गी की भी कोई वाजे हसबंदी नहीं। कुछ लोग इसे दादा दादी नाना नानी का दिन समझते हैं, और कुछ का ख्याल है कि 60 या 70 साल से कहीं ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है।
1: अब ये ना कहिएगा कि अभी हमारी उम्र ही क्या है।
2: बिल्कुल ऐसा कहें कि नहीं सोचते हैं भाई, हमारे अमले की रुकन खाने को बिस्मा कहती हैं कि इस साल बुजुर्गों के लिए एहतराम का दिन कुछ खास है, क्योंकि 21 सितंबर को बुजुर्गों की ताजीम के दिन और 23 सितंबर को खिजा के एतदाल शबरोज की तातील है।
0: हाँ, वो दिन जब दिन और रात का वक्त बराबर हो जाता है। वैसे एक बात है कि 22 सितंबर को भी, 21 और 23 के दरमियान 22 सितंबर को भी हुकूमत ने छुट्टी दे दी है। उसकी वजह यह है कि जापान में अगर दो कौमी तातीलात, वीकेंड की नहीं मैं बात कर रही, दो कौमी तातीलात के दरमियान एक खाली दिन आता हो तो उस दिन भी छुट्टी होती है।
1: अच्छा, इसीलिए इस तवील तातील के लिए यहाँ लोग बहुत पुरजोश हैं।
0: हाँ, क्योंकि हफ्ते इतवार को अगर आप काम नहीं करते तो 19 से 23 सितंबर तक 5 दिन की छुट्टी है।
2: अच्छा, बिस्वा बताती हैं कि आजकल जापान में लोग 5 रोजा छुट्टियों के मंसूबों के बारे में बहुत बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग ईद की छुट्टियों के बारे में करते हैं।
0: जी जी जी,
1: चलिए जी, अब सामीन के पैगाम देख लेते हैं।
0: अरे, छुट्टियों के जिक्र से इतनी खुशी हो रही थी। जी, सामीन के पैगाम का आपने जिक्र किया, तो पैगाम है सिंध पाकिस्तान से हक नवाज टग्गर साहब का। लिखते हैं, प्रोग्राम दीवान खाना मेरे जैसा बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, साथ ही उन्होंने गुलाब के फूलों का और दिल का एमोजी भेजा है।
1: अच्छा, वैसे दो फूल और एक दिल, कुछ समझ नहीं आई।
2: क्यों नहीं समझ आई भाई, देखे, एक दिल आपके लिए, दो फूल, एक मेरा, एक वसीमा का।
1: कामयामा साहब,
0: हक नवाज साहब, आइंदा हमारे प्रोड्यूसर कामयामा साहब और उनकी मुआवन का भी फूल जरूर भेजिएगा।
1: हक नवाज टगर साहब, पैगाम का और हमारी महफिल में रौनक लगाने का बेहद शुक्रिया। वाकई बिल्कुल आप जैसे खूबसूरत सामे और वैसा ही आपका प्रोग्राम।
2: उम्मीद है आइंदा मजीद तफसीली ईमेल लिखेंगे।

0: और मजीद रौनक लगाएंगे। आप जैसे सब सामईन के लिए पैगाम है कि राबते स्तवार रखें, हमें फूल बेचते रहें, हम उन्हें जमा करके बड़ा सा गुलदस्ता बना लेंगे।
1: वाह, फूलों के जिक्र से स्टूडियो में हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई। फूलों का जिक्र हो गया और अब बारी आ गई मौसीकी की।
0: जी, आज वसीमा के दिन, मेरा मतलब है बुजुर्गों के दिन की मुनासबत से गीत सुनवाएंगे।
2: जब आप एक दूसरे पर ऐसे कमेंट देती हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा, तू मेरी बुजुर्ग, मैं तेरी बुजुर्ग। तो आज के मौजू के हवाले से हमने गीत मंतखब किया है इची इची जेरो रॉक, यानी 1106। इसे जापानी रॉक बैंड वानीमा ने पेश किया है। ये बैंड 2010 में कुमामोतो प्रीफेक्चर के तीन मौसीकारों केंता, कोशिन और फूजी ने तश्कील दिया था। अब वो टोक्यो में रहते हैं। उन्होंने 2014 में अपना पहला एल्बम कैन नॉट बिहेव्ड जारी किया था।
0: 2017 में उन्होंने एनएचके के नए साल के म्यूजिक शो कोहाकु उतागासेन में पहली बार शिरकत की।
2: 2018 में उन्होंने अपना पहला बड़ा मुकम्मल एल्बम एवरीबॉडी जारी किया। 2023 में उन्होंने अपने आबाई शहर कुमामोतो में अपना म्यूजिक फेस्टिवल मुनक्किद किया और जापान भर का टूर भी किया।
1: केंता ने यह गाना इची इची जेरो रॉक अपने दादा के लिए लिखा था, जो उनके दादा की तारीख वफात है, यानी 11/06। केंता कहते हैं उन्होंने ये गाना अपने दादा को खत के तौर पर लिखा था।
0: उनके दादा कुमामोतो प्रीफेक्चर के साहिली इलाके अमाकुसा में माहीगीर थे और केंता उनके बहुत करीब थे। इसी ताल्लुक की वजह से वानीमा ने म्यूजिक वीडियो को अमाकुसा में समुन्दर के किनारे फिल्माया, जहां उनके दादा माहीगीरी करते थे।
2: बिस्मा कहती हैं कि उन्होंने ये गाना इसलिए मुंतखब किया कि अगरचे केंता ने यह गाना अपने दादा के लिए लिखा था, उसने मुझे अपने दादा दादी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया।
1: बिस्मा कहती हैं ये गाना सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। केरोनो ही बुजुर्गों के लिए शुक्रगुजारी का दिन है और वो कहती हैं ये गाना मुझे अपने दादा दादी की शुक्रगुजारी पर मजबूर करता है और उनके लिए कुछ खास करने की तहरीक देता है। वानीमा ने इस गीत को उस बुजुर्ग के नाम किया है जो कहीं दूर सफर पर चले गए हैं। तो आइए सुनते हैं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला खवानों का कोनिचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को कामायनी सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा।
2: सभी को रंजना सिंह का भी नमस्कार। लेकर हाजिर है आपके पत्रों के जवाब और आओ पकाए जापानी खाना।
0: कामायनी जी, रंजना जी, स्वागत है आप दोनों का हमारे नए स्टूडियो में।
1: हाँ, नए स्टूडियो में आज मैं पहली बार आई हूँ। सब कुछ बदला सा है लेकिन मजा भी आ रहा है।
2: हाँ, सामने खिड़की तो के क्या कहने हैं। पहले कोई खिड़की नहीं थी तो काफी अंधेरा सा लगता था, लेकिन यहाँ तो जिस दिन सूर्य देव की कृपा होगी काफी उजाला होगा।
0: हाँ, ये तो है। तो चलिए शुरू करते हैं पत्रों का सिलसिला और देखते हैं कि श्रोताओं ने क्या लिखकर भेजा है।
1: जरूर जरूर जरूर। तो सबसे पहले है सुरेश अग्रवाल जी का पत्र किसिंगा ओडिशा से। लिखते हैं, 13 सितंबर के कार्यक्रम का शुभारंभ आपने ये जानकारी देते हुए किया कि आपका स्टूडियो अब एक अन्य इमारत में स्थानांतरित हो गया है। ये जानकर प्रसन्नता हुई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि नया स्टूडियो पुराने स्टूडियो की तुलना में किन किन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।
2: तो देखिए, नए स्टूडियो में जो माइक की व्यवस्था है वो पहले से बेहतर लगी। बाकी तकनीकी बदलावों के बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं पता, क्योंकि हमारा वास्ता बस माइक से ही होता है।
1: वैसे पूरी इमारत ही बिल्कुल नई और आधुनिक है, तो नएपन का एहसास तो है ही। हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर सवादा जी काफी मशक्कत कर रहे हैं। उनकी तो हवाइयां उड़ी हुई हैं। क्योंकि उनका सिस्टम बिल्कुल नया हो गया है, उनको नई तकनीक सीखने में थोड़ा समय तो लगेगा। और सुरेश जी आगे लिखते हैं कि नागोया में 19 तारीख से आरंभ होने वाले एशियाई खेलों को लेकर एक बात विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है। यदि अधिकांश जापानियों को इस आयोजन की जानकारी ही नहीं है, तो इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आम लोगों में इन खेलों को लेकर अपेक्षित उत्साह अथवा रुचि नहीं है। ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक है कि क्या जापान भी इन खेलों के आयोजन को लेकर उतना उत्साहित नहीं है जितनी अपेक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन से की जाती है।
0: सुरेश जी, आपके सवाल बिल्कुल सही हैं। देखिए, खिलाड़ी और आयोजक इसके लिए तो बहुत पहले से तैयारी कर ही रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आम जनता को इसके बारे में अधिक पता नहीं था, क्योंकि शायद हो सकता है मीडिया में इसका प्रचार बहुत कम हुआ। और सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि इस बार जापान में होने वाले हैं ये खेल।
1: लेकिन वायला जी, मैं नागोया की कुछ खबरें पढ़ रही थी।
0: अच्छा।
1: और वहाँ स्थानीय स्तर पर खेल शुरू होने से पहले कई आयोजन हुए हैं, तो खेल जगत सारी तैयारी तो कर ही रहा था। वैसे इस बार खेलों का एक मुख्य मुद्दा था कि खेल गांव नहीं बना है खिलाड़ियों के लिए।
2: तो फिर ये खिलाड़ी और संबंधित लोग कहाँ ठहर रहे हैं?
1: हाँ, इसका बिल्कुल नया इंतजाम है। एक बहुत बड़ी क्रूज शिप इस बार खेल गांव का स्थान ले रही है। इसमें करीब 4,000 लोग ठहर सकते हैं। और ये गत सप्ताह जब नागोया के पास बंदरगाह पर आई तो काफी जोर शोर से इसका स्वागत हुआ। इसके अलावा इस बार कंटेनर होटलों की भी काफी चर्चा है।
0: हाँ, ये तो है। और देखिए, इस हफ्ते से टीवी पर भी इसके प्रसारण को लेकर विज्ञापन आदि देखने को मिले और क्वालिफाइंग मैच भी प्रसारित होने लगे थे। और कल शुभारंभ हो चुका है, तो अब देखिए उत्साह काफी बढ़ रहा है और हर तरफ चर्चा होने लगी है। तो अब जो अभी तक हमें पहले तो देखी नहीं हम लोगों ने।
2: खैर, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उससे ध्यान हटाकर आइए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें और कामना करें कि भारत पिछले खेलों से बेहतर प्रदर्शन करे, नए नए रिकॉर्ड बने और खेलों को बढ़ावा देने का सिलसिला चलता रहे।
1: जी बिल्कुल। और दोस्तों, आपकी रुचि किस खेल में है हमें जरूर लिखकर बताएं।
0: जी।
1: और अब देखिए, खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे जी लिखते हैं, हमारी ओर से NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की पूरी टीम को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: दुर्गेश जी, आपको और सभी श्रोताओं को गणेशोत्सव की बहुत बहुत बधाई। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से उदयभान ठाकरे जी लिखते हैं, काफी अंतराल के बाद आपसे संपर्क कर रहा हूँ। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और नियमित रूप से मैं कार्यक्रम सुनता हूँ। आपके इस नए स्टूडियो और पीछे का बैकग्राउंड वाला दृश्य जो आपने बताया था बहुत अच्छा लगा। नए स्टूडियो में आने की आपको हार्दिक बधाई।
1: उदय भान जी, बधाइयों के लिए शुक्रिया। जी हाँ, आपने बहुत दिनों बाद हमें लिखा है, ऐसे ही हमें कभी कभी याद करते रहे।
0: जी बिल्कुल। और अब देखिए, नारनौल हरियाणा से उमेश कुमार शर्मा जी लिखते हैं कि नई इमारत निश्चित रूप से आकर्षक है, बैकग्राउंड नजारा दिल को सुकून दे रहा है। इस नई इमारत में आपके आने पर ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार करें। साथ ही उन्होंने पूछा है कि जापान में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली और लिखी जाती है और क्यों। मेरे विचार से कांजी और काताकाना, इन सभी भाषाओं में से हिरागाना ज्यादा सरल लगती है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि मैंने आपके द्वारा काफी वर्ष पहले भेजी गई पुस्तक सुबोध जापानी का कई वर्षों तक अभ्यास किया। इसके बाद सरल जापानी, सतरंगी जापानी आपने भेजी, जिसमें तीनों लिपियों का मिश्रण किया गया है। हिरागाना, काताकाना और कांजी का भी प्रयोग किया गया है। अब मैं यूट्यूब के द्वारा कांजी लिखने का अभ्यास कर रहा हूँ और जापानी भाषा में बोले गए वाक्यों को हिरागाना और काताकाना में कुशलता से लिख लेता हूँ, किंतु स्वयं जापानी वाक्य नहीं बना सकता।
1: उमेश जी, क्या बात है, आप हिरागाना और काताकाना लिख लेते हैं, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: बिल्कुल।
1: देखिए, जापान में भाषा तो जापानी ही है, लेकिन इसको लिखने की लिपियां तीन तरह की हैं और इन्हें मिलाकर लिखा जाता है। जब कोई जापानी भाषा लिखना सीखना शुरू करता है तो हिरागाना अक्षरों से करता है, लेकिन सिर्फ हिरागाना में लिखे वाक्यों को पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए धीरे धीरे संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि को कांजी में लिखना सीखते हैं।
0: काताकाना उन शब्दों को लिखने में प्रयोग होती है जो विदेशी शब्द हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन, देशों के नाम या विदेशी लोगों के नाम। हमें ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप कांजी लिखने का अभ्यास कर रहे हैं। अगर वाक्य बनाना सीखना चाहते हैं तो पहले छोटे छोटे वाक्य बनाने से शुरुआत आप कर सकते हैं। इसके लिए हमारी वेबसाइट पर जापानी भाषा सीखें पृष्ठ पर जाएं और शुरुआत करके देखें
2: और फिर हमें बताएं कि कितनी प्रगति हुई। इंतजार रहेगा आपकी अगली टिप्पणी का। अब आइए फेसबुक की कुछ और टिप्पणियां भी ले लेते हैं। धन सिंह नेगी लिखते हैं, उम्मीदें तो गुजाई मास, बहुत बहुत बधाई हो। रामलाल राव रामसा लिखते हैं, अति उत्तम स्टूडियो है जी। अर्चना राजपूत कहती है, नाइस। और दीपक जोशी कह रहे हैं, आपका कार्यक्रम पसंद है।
1: साथ ही परालिया जीवराज, अनिल डोबरियाल, राजीव धीमान और लता पांडे ने भी सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद कहा है।
3: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: स्वागत है एक बार फिर आप सभी का चेरी के देश से कार्यक्रम में।
1: दोस्तों, आज कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में पेश है आओ पकाएं जापानी खाना, जिसमें आज हम बनाना सिखा रहे हैं नासु नो डेंगाकू, यानी मिसो सॉस वाले हल्के तले हुए बैंगन, और नासु नो निमोनो, यानी सिमसिमाए हुए बैंगन।

0: दोस्तों आओ पकाएं जापानी खाना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जुलाई महीना खत्म होने वाला है और जापान में तापमान बढ़ता जा रहा है।
1: इस मौसम में यहाँ नासू यानी बैंगन खूब होते हैं। जुलाई महीने से मिलने वाले बैंगनों का गूदा रसीला होता है और छिलका नरम होता है।
0: आज हम बनाना सिखाएंगे बैंगन के दो व्यंजन। एक है नासू नो देंगाकु यानी मिसो सॉस वाले हल्के तले हुए बैंगन, और दूसरा है नासू नो निमोनो यानी सिमसिमाए हुए बैंगन।
1: ये व्यंजन सिखाने के लिए आज भी हमारे साथ है पाक कला विशेषज्ञ आकिको वातानाबे।
2: कोन्निचिवा, वातानाबे आकिको देसु।
0: नमस्कार, मैं हूँ आकिको वातानाबे। आज आप सीखेंगे नासू नो देंगाकु और नासू नो निमोनो, जो बनाने में बहुत ही आसान है। नासू नो देंगाकु में बैंगनों को हल्के से तल कर मिसो सॉस के साथ परोसते हैं, और नासू नो निमोनो बनाने के लिए बैंगनों को सोया सॉस, चीनी और लाल मिर्च वाले पानी में सिमसिमाते हैं।
1: तो दोस्तों, चार लोगों के लिए ये व्यंजन बनाने की सामग्री नोट कर लीजिए। पहले मिसो सॉस वाले तले हुए बैंगन बनाने की सामग्री। इसके लिए आपको चाहिए चार बैंगन। हर बैंगन लगभग 80 ग्राम का होना चाहिए। मिसो सॉस बनाने के लिए तैयार रखिए चार बड़े चम्मच या लगभग 60 ग्राम मिसो पेस्ट, चार बड़े चम्मच चीनी और 50 मिलीलीटर पानी। साथ ही चाहिए तलने के लिए दो बड़े चम्मच तेल।
0: अब सिमसिमाए हुए बैंगन बनाने की सामग्री। इसके लिए भी आपको चाहिए चार बैंगन लगभग 80 ग्राम का एक, इसके अलावा एक सूखी लाल मिर्च, एक और एक तिहाई बड़े चम्मच चीनी, दो बड़े चम्मच सोया सॉस और 400 मिलीलीटर पानी, और बैंगनों को हल्के से तलने के लिए तेल।
1: पहले हम बना रहे हैं मिसो सॉस वाले तले हुए बैंगन। इसके लिए हमें बैंगनों पर डालने के लिए मिसो सॉस तैयार करनी है।
0: तो एक डेगची में चार बड़े चम्मच मिसो पेस्ट और चार बड़े चम्मच चीनी डालिए और अच्छी तरह मिला लीजिए।
1: अब इस मिश्रण में लगभग 50 मिलीलीटर पानी दो हिस्सों में बांटकर मिलाइए।
0: अगर आपने एक ही बार में सारा पानी मिला दिया तो मिसो सब जगह से ठीक से नहीं घुलेगा। लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करके ढेले तोड़ते हुए मिलाते जाइए और एकदम मुलायम मिश्रण बना लीजिए।
1: जब सारे ढेले खत्म हो जाएं और मुलायम मिश्रण तैयार हो जाए, तब डेगची को मध्यम आंच पर रखिए।
0: ये मिसो सॉस बनाने के लिए मिसो पेस्ट और चीनी के मिश्रण को गर्म करने से पहले ही अच्छी तरह मिला लेना बहुत जरूरी है।
1: गैस जलाने के बाद लकड़ी के चम्मच से मिसो को डेगची से खुरेचते हुए चलाते जाइए। आपको मिश्रण गाढ़ा होने तक ऐसा करना है। मिश्रण को तब तक हिलाते और मिलाते जाइए जब तक वो मायोनीज जैसा गाढ़ा ना हो जाए। बस मिसो सॉस तैयार है।
0: अब बैंगनों की बारी। तो बैंगनों की डंडी काट लीजिए और उन्हें लंबाई में आधा कर लीजिए। इसके बाद कटी हुई सतह ऊपर की तरफ रखकर चाकू से हल्के आड़े चीरे लगा लीजिए। ये चीरे एक दूसरे से लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होने चाहिए और इनकी गहराई होनी चाहिए करीब 5 मिलीमीटर।
1: फिर आड़े चीरे को काटते हुए तिरछे चीरे बनाइए। ये भी एक दूसरे से लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होने चाहिए।
0: अब बैंगनों को हल्के से तलना है, तो एक फ्राइंग पैन मध्यम आंच पर रखिए और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालकर पूरी सतह पर फैला लीजिए।
1: इसके बाद बैंगनों को कागज से अच्छी तरह पोंछकर कटी हुई सतह नीचे की तरफ करके फ्राइंग पैन में रखिए और ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर 2 मिनट तक पकाइए। जब बैंगनों की कटी हुई सतह का रंग सुनहरा भूरा हो जाए, तब उन्हें पलट लीजिए तथा एक बड़ा चम्मच तेल और डाल दीजिए।
0: अब पैन पर फिर से ढक्कन लगाकर और 3 मिनट तक पकाइए। जब बैंगन नरम हो जाएं, तब उन्हें एक थाली में निकाल लीजिए, कटी हुई सतह ऊपर की ओर रखिए।
1: इसके बाद कटी हुई सतह पर मिसो सॉस की पतली परत लगा दीजिए और नासू नो देंगाकु का आनंद लीजिए।
0: अब हम बनाएंगे सिमसिमाए हुए बैंगन। पहले व्यंजन की तरह इस बार भी बैंगनों की डंडी काट दीजिए और उन्हें लंबाई में आधा कर लीजिए। फिर इन टुकड़ों को छिलका ऊपर की ओर करके चॉपिंग बोर्ड पर रख लीजिए।
1: इसके बाद चाकू से बैंगन के छिलके में लगभग 5 मिलीमीटर गहरे तिरछे चीरे लगा लीजिए। ये चीरे एक दूसरे से करीब 5 मिलीमीटर की दूरी पर होने चाहिए।
0: चीरे लगाने से बैंगन खाने में आसान हो जाएंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे।
1: चीरे लगाने के बाद बैंगनों को पानी से भरे डोंगे में डाल दीजिए।
0: इसके बाद सूखी लाल मिर्च को भी नरम होने तक पानी में भिगो कर रखिए। फिर उसे लंबाई में काट कर बीज निकाल दीजिए और करीब 5 मिलीमीटर मोटाई वाले पतले गोल टुकड़ों में काट लीजिए।
1: इसके बाद एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालिए और पूरी सतह पर फैला लीजिए। फिर बैंगनों को कागज से सुखाकर छिलका नीचे की तरफ करके पैन में रखिए और मध्यम आंच पर हल्के से तल लीजिए।
0: अगर हम बैंगनों को तले बिना पानी में सिमसिमाएंगे तो उनका सुंदर रंग पानी में घुल जाएगा। तल लेने से बैंगन का रंग पक्का हो जाता है और व्यंजन सुंदर बनता है।
1: जब बैंगन के सारे टुकड़ों पर तेल अच्छी तरह लग जाए तब उन्हें सिमसिमाना है। तो बैंगन वाले पैन में ही पानी, चीनी और लाल मिर्च के आधे गोल टुकड़े डाल दीजिए। लाल मिर्च के बचे हुए टुकड़े हम बाद में ऊपर से सजाएंगे।
0: इसके बाद हमें बैंगनों के एकदम ऊपर एक ढक्कन रखना है जो पैन से छोटे आकार का हो। आज हम ढक्कन के तौर पर एक थाली का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका व्यास पैन के व्यास से 2 सेंटीमीटर छोटा है। ओतोशी बुता लगाने के बाद बैंगनों को मध्यम आंच पर 5 मिनट तक सिमसिमाइए।
1: 5 मिनट बाद ढक्कन उठाकर देखिए कि बैंगन नरम हो गए हैं या नहीं। अब सोया सॉस डालकर आंच हल्की कर दीजिए और फिर से ओतोशी बुता लगाकर 10 से 15 मिनट और सिमसिमाइए। 10 से 15 मिनट बीतने के बाद पैन में रखा ढक्कन हटा लीजिए। पानी का स्वाद चख कर देखिए। अगर स्वाद फीका लगे तो थोड़ी देर और सिमसिमाइए और अगर ज्यादा तेज लगे तो थोड़ा और पानी मिला दीजिए।
0: पकाने के बाद पानी का स्वाद चख कर देखना बहुत जरूरी है। आज के व्यंजन में हम बैंगनों को इसलिए सिमसिमा रहे हैं ताकि वो जायके को अच्छी तरह सोख लें। इसलिए पानी का स्वाद सही होना बहुत जरूरी है। तो आप भी व्यंजन चख कर जरूर देखिएगा।
1: अंत में व्यंजन को एक थाली में सजाइए, छिलका ऊपर की तरफ रखिए और ऊपर से लाल मिर्च के बचे हुए टुकड़े सजा दीजिए। पैन में बचा पानी भी बैंगनों पर डाल दीजिए और व्यंजन परोसिए।
0: तो दोस्तों अब आप ये व्यंजन बना सकेंगे ना? मिसो पेस्ट वाले हल्के तले हुए बैंगन गर्मा गर्म खाने में अच्छे लगते हैं और सिमसिमाए हुए बैंगन पानी में कुछ देर रखने के बाद जब जायका सोख लेते हैं तब सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप भी ये लजीज व्यंजन जरूर बनाकर देखिएगा।
3: दोस्तों उम्मीद है आपको आज की विधियां पसंद आई होंगी और आप इन्हें बनाने की कोशिश भी करेंगे। अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानो को,
4: रंजना सिंह को
5: और कामायनी सिंह को
6: सायोनारा नमस्कार।